विनष्टेयाता न एञता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम